अवध जब आएंगे मेरे राम, अवध जब आएंगे।

पीछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री रामलला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रा आनंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः

प्रस्तुत है श्री गोविंद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। श्री मद्भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण गुप्त ईश्वरीय ज्ञान प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझे साधारण मनुष्य समझने वाले मूढ़ हैं, मैं तो इस चराचर प्रकृति का सर्वस्व हूँ।

श्री गोविंद आश्वस्त करते हैं कि अनन्य भाव से मेरे चिंतन में रत भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री भगवान अन्य देवताओं की तुलना में स्वयं श्री कृष्ण की उपासना के फल का अंतर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मैं प्रेम भाव से अर्पित पत्र, पुष्प, फल व जल स्वीकार करता हूँ। अतः हे अर्जुन, तुम मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही पूजन व मुझे ही नमस्कार करते हुए मेरे ही भक्त बनो।

0: ये पानी है। जीवन के लिए तीन अनिवार्य आवश्यकताओं हवा, पानी और अन्न में से एक।
1: नदियां पानी ढोती हैं और साथ ही साथ बाकी तीन जरूरतें भी पूरी करती हैं।
0: नदियां हवा शुद्ध करती हैं और अन्न पैदा करने में सहायक होती हैं।
1: इसीलिए हमारे देश में नदियों को जीवनदायिनी माँ के रूप में देखा गया है।
0: गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी से लेकर सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी तक सभी को पूजा गया है।
1: इन्हीं में से एक है बेतवा।
0: कलियुग की गंगा बेतवा,
1: परम पावन बेतवा।

0: चलोर्मी।
1: मेघदूत के इस 24वें श्लोक में कालिदास ने बेतवा के जल में प्रिया के अधरों के स्पर्श का सुख देखा था। तो इसी बेतवा को मार्कंडे ने कुछ ऐसे कहा कि
2: जब सृष्टि विलीन होगी तो बेतवा बाल मुकुंद के उदर में समा जाएगी।
1: महाभारत के वन पर्व में तीर्थ यात्रा प्रकरण के 25वें अध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर को बेतवा के तुंगारण क्षेत्र का महत्व समझाया, जहां सारस्वत, अंगिरा, भृगु ऋषियों ने तपस्या की तथा लोक कल्याण के लिए अनेकों यज्ञ किए।
2: वामन पुराण में कार्तिकेय जब देव सेनापति का पद ग्रहण करते हैं तो बेतवा उन्हें श्वेतानंद प्रदान करती है।
1: वारह पुराण में बेतवा का अलग ही रंग है। इंद्र वरुण पुत्री प्रसंग में बेतवा मोहक मादक रूप में सामने आती है, तो पद्म पुराण में इसकी महिमा इन शब्दों में मंडित की गई है।

0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में झिरी बहेड़ा नामक स्थान से निकली बेतवा अपने उद्गम पर बूंद बूंद रिश्ते जल स्रोत की तरह दिखती है।
1: यहाँ आसपास के चरवाहे तक को ये पता नहीं कि यह किसी नदी का उद्गम है या यहाँ से कोई नदी भी निकली है।
2: हमें तो कुछ पता नहीं, यहाँ कोई नदी वदी नहीं है।
1: और विचित्र है कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर भोजपुर है, जहाँ यही बेतवा बहती हुई कलकल करती हुई दिखती है, जिसे वही चरवाहा अच्छी तरह जानता है।
2: हाँ जी, भोजपुर तो अच्छे से जानते हैं, वहाँ बेतवा भी है।
0: भोजपुर, मध्य भारत का सोमनाथ। यहाँ 2.3 मीटर ऊंचा तथा 5.49 मीटर घेरे वाला विशालतम शिवलिंग है।
1: यही वो पहला पुण्य स्थल है जिसे बेतवा ने अपने उद्गम से 16 किलोमीटर दूर जाकर सौंपा है।
0: विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पारियात पर्वत क्षेत्र जहां से बेतवा निकली है, वो स्थान समुद्र तट से 525 मीटर ऊंचाई पर है। पारियात पर्वत से निकलने के कारण बेतवा को पारियात पुत्री भी कहा गया है।
1: अलग अलग कारणों से इसके और भी कई नाम हैं। जैसे इसके किनारे बहुत सारे बेंत होते थे, इसलिए बेंतों वाली कहा गया। पहले इसकी धारा का बहाव बहुत तेज था, वेगवान था, इसलिए वेगवती कहा गया। वही बिगड़ते बिगड़ते वेत्रवती और अब बेतवा हो गया।
0: पुराण कथाओं में वृत्तासुर नामक दैत्य का उल्लेख मिलता है। पुराणकारों के अनुसार उसी ने महागंभीरा कुआ खोदा जिसमें से बेतवा प्रवाहित हुई।
1: कितना विचित्र है कि जिस नदी को दैत्य ने प्रवाहित किया वो लगातार लोक मंगल करती रही है, अपने तट पर संतों कलाकारों को जन्माया है, जैसे ओरछा के तुंगारण्य क्षेत्र में तुंग ऋषि।

0: बेतवा के किनारे हमीरपुर जिले में जितकरी नामक स्थान है, जहां याज्ञवल्क ऋषि ने दर्शन शास्त्र तथा समाज शास्त्र की अनेकों अवधारणाएं रची।
1: बेतवा के ही तट पर चंडौत के च्यवन ऋषि ने अक्षुण यौवन तथा निरोग स्वास्थ्य का अमर रसायन च्यवन प्राश तैयार किया। इसी बेतवा के जल से उन्होंने कायाकल्प योग सिद्ध किया।
0: बेतवा के जल के औषधि गुण के बारे में जानकारी देते हुए ओरछा संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य श्री रामकृष्ण मिश्र,
2: यह बेतवती जम्बू वृक्षों के की जड़ों से स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली नदी है। इसमें इसके किनारे अधिकांश जामुन के पेड़ पाए जाते हैं और यह जामुन के पेड़ से स्पर्श करके चलने वाला ये जो जल है, इस बेतवती में हवन की सामग्री में काम आने वाली औषधि जिसे गोंदरा कहते हैं, उस वही भी अधिकांश रूप में पाया जाता है। और ये दोनों वस्तुएं जम्बू मूल का रस और गोंदरा की जड़, ये दोनों मिलकर के एक सुंदर त्वचा को साफ करने वाली और मानसिकता पर प्रभाव करने वाली औषधि का काम करती है।
0: बेतवा के ही तट पर पाराशन में पाराशर ऋषि ने दीर्घकालीन साधना से मनुष्य के मोक्ष के साधन जुटाए। तो यहीं से थोड़ी दूर इंदल घाट ने इतिहास प्रसिद्ध चंदेल परमाल युद्ध देखा।
2: आला चल रहा नागरिक।

0: जैसे अहरन पर घन पटके तैसे तैसे करे लोहार, जैसे तोता आम को काटे और तंबोली काटे पान, दर्जी काटे जो कपड़े को अपना काटे खेती किसान, बड़े लड़ैया गर्म हो देखे जिनकी बात कहीं ना जाए, बड़े लड़ैया गर्म हो देखे जिनकी बात कहीं ना जाए, एक कुमारे दो मर जा बेटी सुरहे दस का गिर जाए, एक कुमारे दो मर जा बेटी सुरहे दस का गिर जाए।
1: बेतवा तट का एक और गौरव,
2: बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल, जिनकी मुगल सेनापति सैयद गाजी से हुई युद्ध गाथा कोटरा की किंवदंती बन गई है।
1: इसी बेतवा के किनारे ओरछा में केशव ने हिंदी कविता को वो ऊंचाई दी जिसे सूर तुलसी के समकक्ष समझा गया।

0: सूर सुता शुभ संगम तुंग तरंग तरंगिनी गंग सिसोहे।
1: चंदेरी इसी बेतवा तट की शोभा है जहां बैजू बावरा ने संगीत को जीवन रस में तब्दील कर दिया था।
2: जानकारी देते हुए संस्कृति कला और साहित्यविद श्री राम भरोसे चौरसिया।
3: कला संस्कृति के बारे में तो यह था कि वास्तव में चंदेरी संगीत सूर्य बैजू बावरा का ये नगर रहा है। विश्व प्रसिद्ध वो गायक थे और आपको मालूम है कि खड़ी प्रतियोगिता में उन्होंने डांस को भी पराजित किया था। उनका यह स्मारक है।
2: बेतवा ने खड़ी बोली को मैथिली शरण गुप्त जैसा राष्ट्र कवि दिया तो इस

0: वेगवती पेत्रवंती पेत्वा झिरी बहेड़ा से झिरकर जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती जाती है।
1: अनेकों नदी नाले बेतवा को अपनी जल राशि सौंप कर उसे समृद्ध करते हैं
0: और जल से समृद्ध हुई बेतवा आसपास के क्षेत्रों की पैदावार बढ़ाती हुई आगे ही आगे बढ़ती जाती है।
1: विस्तृत जानकारी देते हुए गंज बासोदा के जल संसाधन कार्यपालन यंत्री श्री राम सिंह दरबारी।
2: विदिशा में जो हलाली है जिसको आजकल सम्राट अशोक सागर परियोजना कहते हैं, ये बृहद परियोजना है और इससे बीसा जिले में 21,566 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसके साथ ही यहाँ पर दो मध्यम परियोजना भी हैं, एक कैथन परियोजना है जिससे 2500 हेक्टर सिंचाई हो रही है और ये कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी नरेंद्र परियोजना है, ये भी मध्यम योजना है, इससे इस समय 2500 हेक्टर सिंचाई हो रही है और इसका रूपांकन क्षेत्र जो है वो 2827 हेक्टर करीब। यहाँ पर जो है 27 से लघु सिंचाई योजना है और 4 उद्वहन सिंचाई योजना है और इन सब योजनाओं से 45,740 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है और जिले का निरा जो बोया हुआ क्षेत्रफल जो है 5,17,928 हेक्टर है और इस जिले का अभी सिंचाई प्रतिशत जो है 8.83% है। सिंचाई योजनाओं के बनने के बाद में यहाँ की जिले की बहुत ज्यादा प्रगति हुई है।
1: बेतवा पर कई छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं जो सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन के काम भी कर रहे हैं।
0: पारीछा बांध 1885 में बना था। उत्तर प्रदेश के झांसी हमीरपुर तथा जालौन और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ तथा भिंड जिले इससे लाभान्वित होते हैं।
1: ढुकवा बांध 1909 में बना।
0: माता टीला बांध 1952 में बना।
1: इन बांधों के बारे में बताते हुए अधीक्षण अभियंता श्री बीएम पवार।
3: सन 1885 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारीछा जलाशय का निर्माण कर बेतवा नहर प्रणाली का शुभारंभ किया गया। पारीछा जलाशय की क्षमता में योगदान देने के लिए सन 1909 में ढुकवा बांध निर्मित किया गया। यह योजनाएं उत्तर प्रदेश के झांसी और जालौन जिलों में सिंचाई की सीमित आवश्यकता पूरी करती थी। पहली बार सुनियोजित सिंचाई के लिए सन 1958 में उत्तर प्रदेश शासन ने माता टीला बांध बनाकर एक बहुउद्देशी परियोजना प्रारंभ की। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बेतवा नहर प्रणाली के विस्तार और गुरसराय नहर प्रणाली के निर्माण तथा मध्य प्रदेश में भांडेर नहर प्रणाली से सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि के अतिरिक्त जल विद्युत का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ।

0: राजघाट वर्तमान समय का विज्ञान तीर्थ है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर बन रही ये परियोजना बेतवा का वरदान है।
1: राजघाट परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए चंदेरी के अधीक्षण अभियंता श्री जीपी बिथारिया।
2: ये राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर एक राजघाट बांध का निर्माण हो रहा है, दोनों राज्यों के सहयोग से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। तो राज्य में जो नहरों का निर्माण है वो दोनों राज्य अपने अपने स्रोतों से कर रहे हैं। इसमें जो नहरें निकलती हैं तो बांध के बाएं तट से एक नहर निकलती है, LBC नहर। इसकी लंबाई करीब 84 किलोमीटर है और नीचे एक ढुकवा बांध है, वहां से दतिया करियर कनाल निकलेगी DCC, जिसकी लंबाई 49.50 किलोमीटर है। तो ये जो अपना बाई तट नहर है, इससे जो डायरेक्ट इरिगेशन होगा ये 18,433 हेक्टर

की लंबाई करीब 84 किलोमीटर है और नीचे एक ढुकवा बांध है, वहां से दतिया करियर कनाल निकलेगी DCC, जिसकी लंबाई 49.50 किलोमीटर है। तो ये जो अपना 62 नहर है, इससे जो डायरेक्ट इरिगेशन होगा ये 18,433 हेक्टर का होगा, और ये अपने जो दतिया करियर कनाल है इससे डायरेक्ट इरिगेशन तो कोई नहीं है। टीकमगढ़ में थोड़ा इरिगेशन है, 3,383 हेक्टर। बाकी इसका पानी जो है वो अंगूरी बैराज में डाला जाएगा। अंगूरी बैराज से पावर जनरेशन भी होगा।

0: इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 1,16,000 हेक्टेयर इरिगेशन होगा और इस योजना को वर्ष 1998 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
1: आधुनिक विकास यात्रा में बेतवा सांस्कृतिक जीवन की धरोहरों से सराबोर है।
2: बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा ही नहीं, सांस्कृतिक रेखा भी है।
1: बेतवा के किनारे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ सांची है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री शिव कुमार जीव ने।
3: सांची का निर्माण सम्राट अशोक के समय से प्रारंभ होता है। उन्हीं के महान परिश्रम से इस स्थल का उत्थान निरंतर होते रहा और वह चमन के झूले झूलता रहा। यह स्थल विंध्य पर्वत शिखर पर लगभग 300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह दूर से अश्व के समान दिखाई देता है। सम्राट अशोक ने यहाँ चैत्यों, तोरणों, संघारामों, विहारों आदि का निर्माण किया। सांची की शिल्पकला भगवान बुद्ध के जीवन काल की चार विशेष घटनाओं से संबंधित है। ये घटनाएं हैं भगवान बुद्ध का जन्म, उनका बुद्धत्व, धम्मचक्र का परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। इन गुप्तकालीन शिल्पकलाकारों ने मूर्तियों का निर्माण वास्तविकता पूर्ण ढंग से किया। सांची के मुख्य चैत्य द्वार पर रही एक विशाल एवं अप्रतिम स्तंभ है, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मुख्य चैत्य में सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेषों को स्थापित किया तथा चैत्य नंबर 2 और 3 में भिक्खु सारिपुत्त एवं महामोग्गलायन के पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखा गया।
1: देशभक्ति तथा स्वाभिमान का गुण बेतवा के पानी का स्थायी अंग बन चुका है।
2: जून 1924 में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने बेतवा के तट के घने जंगलों में शरण ली थी।
1: ओरछा से सटे गांव सातार के श्री गोविंद सिंह तोमर बताते हैं।
4: भगवान दास माहौर झांसी के हैं, वो भी नेताजी हैं। इनसे उनकी मुलाकात थी, वो झांसी आए तो झांसी ने भी उनका मकान घेर लिया। जब पुलिस ने मकान घेर लिया तो ये जनानी भेज करके भागते भागते अब उन्हें का जंगल है तो रेलवे लाइन की लेके और फिर ओरछा चले गए ये सीधे।
1: 12 अप्रैल 1930 जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, उसी दिन झांसी से भी सत्याग्रह यात्रा शुरू हुई थी और बेतवा के कछार में लोना मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया गया था।
2: धार्मिक समभाव तथा सहिष्णुता के दृष्टिकोण से बेतवा की यात्रा अद्भुत समन्वय बिखेरती है।
1: बेतवा के ही किनारे देवगढ़ है, तो हिंदू जैन संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है।
2: ओरछा मध्य भारत की अयोध्या है। बेतवा तट पर बसी ये पुण्य नगरी स्वयं में संस्कार तथा साहित्य संस्कृति का अपूर्व उदाहरण है।
1: यहाँ के राम राजा मंदिर के सेवक से लक्ष्मण सिंह गौर बताते हैं।
5: 16 से 31 बिक्री में तुलसीदास जी ने रामायण जी की रचना की है। उसी दिन उसी नक्षत्र में भगवान यहाँ वो अयोध्या की ओर से आए हैं। मत्कोसा महाराज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा ले आई अवर नदी।
1: बेतवा तट पर शांडिल्य ऋषि की साधना स्थली जलालपुर है। इसी के पास रिरुआ नामक स्थान है जो जैन प्रमुख ऋषभ देव की साधना स्थली रहा है।
2: सैदनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ कितने ही मंदिर मस्जिद आसपास बने हैं। यहाँ शंख ध्वनि के साथ पूजा आरती भी होती है, अजान भी होती है। इसे सिद्धनगर भी कहते हैं। रक्तदंता मारण मोहन की सिद्ध स्थली है सैदनगर,
1: जहाँ दुर्भाग्य से कुछ नदियाँ अपनी भौगोलिक संरचना के कारण कई समस्याएं पैदा करती हैं। वहीं बेतवा अपने उद्गम से यमुना में समागम तक 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा में केवल प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, उत्साह और देश प्रेम बांटती है। यहाँ तक कि इसके आसपास कई समस्याओं के निदान भी खोजे गए हैं।
2: जैसे मुगावली 1977 में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सैकड़ों डाकू ने आत्मसमर्पण किया तो उन्हें सुधारने के लिए मुंगावली की खुली जेल में रखा गया था।
1: मुंगावली जेल के सहायक जेलर श्री आर आर रॉय का कहना है।
6: देखिए, मुंगावली में जो खुली जेल खोली गई। इसके पीछे सन 1973 में जब चंबल के आत्मसमर्पण

0: डाकुओं ने जयप्रकाश के सामने आत्मसमर्पण किया तो उनको समाज की मुख्य धारा में पुनः सम्मिलित करने हेतु और उनकी विशेष मांग पे उस खुली जेल की स्थापना 1973 में की गई। दूसरी जेलों में यदि उनका चाल चलन अच्छा रहा है, उनकी केस हिस्ट्री कोई वो पेशेवर हत्यारा न हो इस तरह का रहा हो, तो आजकल इसी आधार पर खुली जेल में कैदी भेजे जाते हैं।
1: बेतवा का संपूर्ण क्षेत्र सस्य श्यामला की वानस्पतिक अनुप्रति है। अनगिन पेड़ पौधे, वन जंगल इसके तटों पर फैले पड़े हैं,
2: जैसे सागौन, शीशम, थौ, साज, तेंदू, महुआ, नीम, बबूल,
1: आम, जामुन, आंवला, उमर, अचार, बेर, मकोरा, बेल, नींबू और करौंदा।
2: बेतवा के उपजाऊ क्षेत्र में अमरूद, संतरा, मौसम्बी, कटहल, सीताफल, अंगूर इत्यादि भी पैदा किए जाते हैं।
1: इसकी जमीन में कच्चे होने पर खट्टे लगने वाले तथा पकने पर मीठे लगने वाले फल खासकर अच्छी पैदावार देते हैं।
2: आयुर्वेद के लिए बेतवा घाटी वरदान है। आयुर्वेद में उपयोग के लिए पौधों की लंबी लंबी श्रृंखला है।
1: अर्जुन, अशोक,
2: कचनार, अमलतास,
1: खैर, बकायन,
2: बहेला, बिलवादी जैसे बड़े वृक्षों के अलावा शंखाहुली, नागरमोथा, कष्टकारी,
1: केवंश बीज, भारंगी, गोखरू,
2: उदयफूल, नाय, इंदौस,
1: बच्ची, नरगुंडी, इंद्रजौ,
2: आक, धतूरा, जवासा
1: और हरजरू, इमलौसा, फूलकट जैसे छोटे पौधे भी हैं।
2: विकास के क्रम में हमारे बीच से ये सुख धीरे धीरे घट रहा है। कभी बेतवा के पास घने जंगल थे, पर अब सब क्षीण होता जा रहा है।
1: पर हाँ, उम्मीद बाकी है, क्योंकि आज भी जब सिरीप, दुधी, काग, कदम की फूलने के दिन आते हैं तो बेतवा रंग और गंध से भर उठती है।
2: रंग गंध की झलक हमें ये विश्वास दिलाती है कि आज बेतवा अपने अतीत के सांस्कृतिक, कलात्मक, धार्मिक, वानस्पतिक वैभव तथा आधुनिक विकास के संक्रमण पर जहाँ खड़ी है, वहां से आगे भी वो बीच का रास्ता निकाल ही लेगी। लेकिन इसके लिए हमें मंडीदीप और विदिशा में हो रहे औद्योगिक विकास से उत्पन्न संभावित खतरों को पहले जांच लेना होगा।
1: इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के वरिष्ठ शोध अधिकारी डॉक्टर एस एम मिश्रा।
3: औद्योगिक प्रदूषण यहाँ पर कुछ स्थानों पर अधिक पाया गया है, जिसमें एक मंडीदीप और दूसरा विदिशा है। यदि कहा जाए कि प्रदूषण की समस्या इतनी विकराल हो गई है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, यह तो कहना असत्य होगा। लेकिन यदि हम इनमें में से इन समस्याओं से ऊपर उठ करके नदी का एकीकृत योजना शुरू से प्रारंभ से, जहां से कि नदी अपना स्वरूप लेती है वहां से और अंत तक हमीरपुर में मिलने के पूर्व तक अगर पूरी योजना बनाई जाए, तो शायद यह संभव है कि हम अपने इन प्रयासों के कारण इस नदी को प्रदूषण से बचा सकते हैं।
1: एक आदर्श उद्योग भी बेतवा के किनारे अपनी पृथक पहचान बनाए हुए है।
2: ये है चंदेरी का हथकरघा उद्योग।

0: देवानी हमें सूर्यकांत मणि, सुलेमानी पत्थर, गोमेदक, दूधिया पत्थर तथा बिल्लोर जैसे नगीने भी दिए हैं। हमें भी सोचना है हमारे पास क्या है बेतवा को देने के लिए।
1: भ्रम न हो न संशय, क्योंकि भ्रम अंततः ऐसी चूक में बदल जाते हैं जिन्हें ठीक कर पाना संभव नहीं होता।
0: जैसे बेतवा धसान संगम पर दस्तक हुआ था, जल भरते श्रवण को मृत के भ्रम में बाण से मार डाला था।
1: इसीलिए हमें अपनी दृष्टि स्पष्ट रखनी होगी
0: और अक्षुण्य रखनी होगी। झिरी बहेड़ा से पत्योरा तक बेतवा की स्थायी संस्कृति,
1: झिरी बहेड़ा से भोजपुर,
0: रायसेन,
1: सांची,
0: विदिशा,
1: गंज बासौदा,
0: राजघाट,
1: बसई,
0: माता टीला,
1: ओरछा,
0: हमीरपुर होते हुए
1: अपने संपूर्ण क्षेत्र को सींचती, संपन्न बनाती, सुसंस्कृत करती बेतवा अपने अभीष्ट को पत्योरा में प्राप्त

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, किंतु उसने त्रिलोक स्वामी शिव तथा देवी सती को आमंत्रित नहीं किया। महादेव की अनुमति से देवी सती इसका कारण जानने दक्ष यज्ञ में गईं। अभिमानी दक्ष ने यज्ञ स्थल पर उनका भी अपमान कर डाला। महर्षि दधीचि के नेतृत्व में अनेक ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु दक्ष टस से मस न हुआ। पति के अपमान से आहत हो देवी सती ने अपनी देहाहुति दे दी। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने दक्ष और दक्ष यज्ञ विनाश की घोषणा की। प्रस्तुत है इसके आगे का प्रसंग। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: परम ज्ञानी सूद जी, जो भी हो, धन्य है देवी सती। उन्होंने समस्त स्त्री वर्ग के लिए पतिव्रत धर्म का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि एक पतिव्रता को पति निंदा सहन नहीं होती है। वो प्राणों पर खेल कर भी अपने पति के सम्मान की रक्षा करती है।
2: शौनक जी, देवी सती की महानता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि उन्होंने पति से मान

0: बिछो भगवान शिव के लिए असहनीय हो गया। दंभी दक्ष के प्रति उनका क्रोध आकाश छूने लगा। उन्होंने अपनी एक जटा से अपने ही विकराल स्वरूप वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया।
1: दक्ष का ये दुस्साहस, वीरभद्र।
2: आज्ञा महाप्रभु।
1: जाओ दक्ष और दक्ष यज्ञ का विनाश कर डालो।
2: जो आज्ञा महादेव।
1: महाकाली।
3: आदेश देवाधिदेव।
1: तुम काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन सभी नव दुर्गाओं के साथ यज्ञ विनाश में वीरभद्र का साथ दो।
3: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है जन्मदाता।
1: और तुम नंदीश्वर।
4: जी महाप्रभु।
1: हमारे समस्त गणों का नेतृत्व करते हुए वीरभद्र का सहयोग करो।
4: आज्ञा पालन होगा देव।
1: वत्स वीरभद्र, जाओ सहस्त्र सियों से जुते हुए इस रथ पर आरूढ़ हो सेना का नेतृत्व करो। जाओ मेरे गणों, विजयी होकर लौटना।
5: देवाधिदेव महादेव की
6: जय।
5: देवाधिदेव महादेव की
6: जय।
5: देवाधिदेव महादेव की
6: जय।
5: भोले भंडारी की
6: जय।
5: भोले भंडारी की
6: जय।
7: हमारे स्वामी का अपमान करने वाले दक्ष, हम आ रहे हैं।
8: बम बम भोले, बच सकता है तो बच।
3: महादेवी की बलिदान स्थली को हम रक्त रंजित कर देंगे।
6: रक्त रंजित कर देंगे। रक्त रंजित कर देंगे।
9: अरे ये क्या अचानक मेरा बायां हाथ क्यों फड़कने लगा? ये यज्ञ भूमि क्यों डोलने लगी? ये संपूर्ण आकाश में उथल पुथल मच गई है। ये कैसे भयावह चक्र सूर्य मंडल को घेरे जा रहे हैं? बादलों के बिना ही ये बिजली कैसे कौंधने लगी? अवश्य ही कोई विपदा आने वाली है, कोई विपदा आने वाली है। बिजली कैसे कौंध रही है?
10: अधिपति दक्षराज, अधिपति दक्षराज, रुद्र सेना ने आक्रमण कर दिया है।
9: क्या?
11: कौन है यहाँ जो शिव शक्ति का सामना कर पाएगा?
8: हम भभूत धारी है, सत्य है, हम भभूत धारी है। आज तुम्हारी देह की भस्म ही हमारा भभूत बनेगी। शिव निंदको, बच सकते हो तो बचो।
11: अरे अरे देखो, वो दक्ष मृग का भेष धारण करके भागा जा रहा है।
8: अरे शहर रे ज्ञानहीन दक्ष, तेरा सिर अभी धड़ से अलग करता हूँ।
12: वो देखो वीरभद्र, ऋषियों को भ्रमित करने वाला, ब्राह्मणत्व को कलंकित करने वाला भृगु उस वृक्ष के पीछे जा छिपा है।
8: अभी उसको उसकी नियति तक पहुँचाए देता हूँ।
12: क्षमा हे शिवरूप वीरभद्र, क्षमा। शिव अवहेलना कर मुझसे अपराध हो गया, क्षमा हे शिव शंकर, क्षमा।
8: तुमने मेरे स्वामी से क्षमा याचना की है, इस कारण मैं तुम्हें मृत्यु भय से मुक्त करता हूँ, किंतु दंड तो अवश्य ही दूंगा। मैं तुम्हारी जटा

0: तुम्हें मृत्यु भय से मुक्त करता हूं, किंतु दंड तो अवश्य ही दूंगा। मैं तुम्हारी जटाओं को ही उखाड़े डालता हूं।
1: विध्वंस, महाविध्वंस, इससे मेरी रक्षा, मेरी रक्षा मातृ परम पिता ही कर सकते हैं। विध्वंस,
2: नहीं पुत्र दक्ष, तुम्हारी रक्षा अब किसी के सामर्थ्य में नहीं है। मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूं, यह समझ तुमने अपने आप को परम ब्रह्म मान लिया। भूल गए कि परम ब्रह्म कौन है? स्वयं तुम्हारे इस पिता और भगवान विष्णु के जन्मदाता भगवान शिव हैं।
1: परंतु पितामह, आपके बल पर ही मैंने इस यज्ञ का आयोजन किया था।
2: यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं शिव तथा विष्णु से भिन्न हूं? तुमने अपने मानस में ही सही अंतर देवों को विभाजित करने का पाप किया है। इसका फल तो तुम्हें भुगतना ही होगा।
1: आप मेरे पिता हैं।
2: दक्ष, पिता परमेश्वर से बड़ा नहीं होता है। जाओ जाओ, भगवान विष्णु की शरण में जाओ। कदाचित वही कोई उपाय बता सके, परंतु इसमें भी हमें संदेह है।
1: जैसी आज्ञा पितामह।

0: तो तुम्हारे अहंकार ने ही आमंत्रित किया है। शिव तत्व से विमुख होकर तुम भूल गए कि क्या कर्म है और क्या अकर्म। जो शांत मन से ईश्वर की भक्ति करते हुए कार्य करता है, प्रभु शंकर तुरंत ही उसके कर्म का फल देते हैं। परंतु जो मनुष्य ये मानता है कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, ईश्वर को भुला देता है, वो प्रभु के तिरस्कार का पात्र बनता है। तुमने देवी सती का अपमान किया है, इससे बड़ा कुकर्म और क्या हो सकता है?
1: परंतु श्रीहरि, मैं आपका भक्त हूं।
0: हम तीनों देव तो सदा ही भक्त के अधीन रहते हैं। भक्त की भक्ति हमारे चित्त को प्रसन्न करती है, हमारे मानस को शांति प्रदान करती है, और इसी भक्ति के अधीन हो हम तीनों भक्त के अनुरोध पूरे करते हैं। जो भक्त सुख दुख दोनों ही में हमें स्मरण करता है, वो सदा ही हमारा कृपा पात्र बनता है।
1: हे प्रभु, आज आपका भक्त अपनी प्राण रक्षा का अनुरोध कर रहा है। भक्त वत्सल, भगवान विष्णु।
0: अरे दक्ष, प्रभु शिव से बड़ा भक्त वत्सल कौन हो सकता है? ऐसे विकट और विषाद पूर्ण समय में भी उन्होंने अपने इस भक्त अर्थात मुझे श्राप मुक्त करने की लीला रच डाली। मैं वीरभद्र से युद्ध करूंगा दक्ष, परंतु तुम्हारा पक्षधर बनकर नहीं, उस महाप्रभु की आज्ञा से जो सदा अपने भक्तों का कल्याण ही सोचते हैं।
2: महाज्ञानी शौनक जी, भगवान विष्णु तथा वीरभद्र के बीच घमासान हुआ। परिणाम प्रभु जानते थे। वीरभद्र ने उनके सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर दिया, उनका शरीर अस्त्रों से आच्छादित कर दिया। पराजित भगवान विष्णु शिव का स्मरण करते हुए अंतर्धान हो गए। शिव महिमा ने उन्हें दधीचि के श्राप से मुक्त कर दिया था।
3: महाभाग सूत जी, क्या दधीचि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था? कब, कैसे?
2: प्राचीन काल में क्षुव नाम के एक महातेजस्वी राजा थे। वो और मुनीश्वर दधीचि बड़े अच्छे मित्र थे, परंतु एक बार दोनों में विवाद छिड़ गया। क्षुव का कहना था कि क्योंकि राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है, इसलिए वही श्रेष्ठ होता है।
3: और महर्षि दधीचि का क्या विचार था?
2: शौनक जी, शिव भक्त दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण प्रभु के निकटतम है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि धन वैभव से मदमत्त क्षुव ने मुनि दधीचि का शरीर अपने वज्र से काट डाला। गिरते गिरते दधीचि ने योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया।
4: हे शिव भक्त शिरोमणि मृत्युंजय विद्या प्रवर्तक शुक्राचार्य, इस ब्राह्मण की रक्षा करो, रक्षा करो।
5: अरे अहंकारी राजन क्षु, तुझे अपने धन वैभव बल पर बहुत अभिमान है। आ, एक एक ब्राह्मण अपने तप बल से क्या कर सकता है? तूने क्षण भर में एक ब्राह्मण के टुकड़े तो कर डाले, परंतु क्या तू इन्हीं टुकड़ों को पुनः जोड़ सकता है? नहीं, किंतु एक शिव भक्त ब्राह्मण ऐसा कर सकता है।

0: मैं धन्य हुआ मुनि शुक्राचार्य, मैं धन्य हुआ। आपके इस मंत्रोच्चारण से मुनिवर मेरे सभी अंग पूर्ववत हो गए हैं। मुनिवर, ये कौन सा मंत्र है?
1: तात गधी जी, ये श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय मंत्र है।
0: मुनिवर शुक्राचार्य।

0: ने पर अपनी लता से छूट जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष को प्राप्त करूं। महर्षि दधीचि, यही मृत्युंजय संजीवनी मंत्र है।
1: गुरु शुक्राचार्य, क्षोभ ने समस्त ब्राह्मण वर्ग का जो अपमान किया है, उसका प्रतिकार कैसे लिया जाए?
0: मुनि श्रेष्ठ दधीचि, शिव चिंतन कीजिए और उनसे वरदान प्राप्त कीजिए। हम जाते हैं मुनिवर, आप शिव आराधना में लीन होइए।
2: ओम शंकराय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शंकराय नमः।
1: देवाधिदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ।
3: वर मांगो भक्त शिरोमणि दधीचि।
1: प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वर दीजिए। पहला, मेरी अस्थियां वज्र हो जाएं, और प्रभु दूसरा, कोई मेरा वध ना करने पाए, और प्रभु तीसरा वर मुझे ये दीजिए कि मुझ में कभी दीनता ना आए।
3: तथास्तु
1: प्रभु।
4: महामुनि शौनक जी, ये 3 वर प्राप्त करने के पश्चात ऋषि दधीचि राजा

श्रेष्ठ, भगवान विष्णु ने क्षुभ से कहा कि उनका क्षुभ के साथ जाकर उसका पक्षपात करना दधीचि को दुख पहुंचाएगा और महर्षि का यह दुख क्रोध का रूप लेकर विष्णु के लिए श्राप का कारण भी बन सकता है। मगर फिर भी विष्णु भक्त के अधीन थे, वे अकेले ही ब्राह्मण का रूप धरकर महर्षि दधीचि के आश्रम में जा पहुंचे।

0: पति दक्ष को जीवन दान दें ताकि मानव उत्पत्ति फिर आरंभ हो सके, सृष्टि का कार्य फिर सुचारू रूप से चलना आरंभ हो जाए।
1: विधात, श्री हरि, दक्ष का विध्वंस मैंने नहीं किया है, ये उसके अपने कर्मों का ही फल है। कभी किसी को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो, परंतु

0: नंदीश्वर।
1: आज्ञा प्रभु।
0: दक्ष के शरीर को यहाँ लाओ।
1: अभी लीजिए प्रभु। दक्ष शरीर प्रस्तुत है प्रभु।
0: परंतु इसका सिर कहाँ है?
2: महाप्रभु, उसे तो मैंने उसी समय अग्नि में होम दिया था।
0: नंदी।
1: हाँ।
0: यज्ञ पशु बकरे का सिर लाओ।
1: लीजिए स्वामी।
0: दक्ष,

ये जो भक्ति का धन है, सुमिरन का धन है, पूजन का धन है, इस धन को सबसे बड़ा धन क्यों कहा गया? ऐसी इसमें कौन सी विशेषता है? तो इस पंक्ति में सुनिए, समझ में आ जाएगा क्यों।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनात। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम सुमिरन उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शायद के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

0: ये आकाशवाणी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक माला की दूसरी कड़ी। लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर।
2: रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। बड़े बड़े प्रतापी एकत्र हुए हैं जनक की यज्ञशाला में। जनक अपने सेवकों को आदि

देश दे रहे हैं, सबको उनके योग्य आसन दो। भारी भीड़, जनकपुरी के बाल जुबान जरठ नर नारी अपने समस्त गृह कार्य बिसार कर रंगभूमि में उमड़ पड़े। और तभी राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। श्रोताओं, भगवान रामचंद्र के आसन ग्रहण करने पर क्या हुआ,

0: नारी बिलो कहीं हरसिहि निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप। और राम ही चितव भाई चेहि सिया सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। श्रोताओ, मैं बेचारा कवि कैसे उस अनिंद्य और सहस्र रूपी शोभा का वर्णन कर सकता हूं, आप स्वयं देखिए। मिथिलेश जनक की रंगस्थली में राजाओं की पंगत और नर नारियों के समूह के बीच राम लक्ष्मण, राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चो।
1: सब नृपगणों को सादर अपने अपने स्थान पर बैठा दिया ना?
2: जी महाराज।
1: भीड़ बहुत है,
2: किंतु सभी दर्शक अपने यथोचित स्थान पर बैठ गए हैं।
1: किसी से कटवाणी तो नहीं बोले?
2: नहीं महाराज, जैसा आपने कहा था हम लोगों ने मृदु वचन बोलकर सभी नर नारियों से विनती की।
3: देखा तुमने उन दोनों राजकुमारों को?
4: जहां जहां जाई कुंवर बर दो तहां तहां चकित चितव सबको।
5: मुझे तो ऐसा लगता है बिन भंज हूं भव धनुष विशाला मेल ही सी राम उर्माला।
4: बिना धनुष तोड़े ही क्या बात कही तुमने? तोरे हूँ धनुष ब्याहू अब गाहा बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा। अरे एक बार कालू किन होऊ सियहित समर जितब हम सोऊ।
5: व्यर्थ मरहु जनी गाली बजाई मन मोद कन्ही की भूख बुताई।
4: सुंदर सुखद सकल गुण राशि ए दो बंधु संभ उर्वासी।
1: भाटगण तनिक इधर आइए।
2: जी स्वामी।
1: अब आप इस सभा के समक्ष मेरा प्रण घोषित कीजिए।
2: महाराज, हम इसी अवसर की बात जो रहे थे।
6: नगाड़ा बजाओ। हे पृथ्वी का पालन करने वाले उपस्थित राजागण सुनिए। पर्ण विदेह कर कहे हैं हम पूजा उठाए विशाल।
7: सामने मंच पर स्थित

0: ये शिव धनुष भारी है, कठोर है, ये सभी जानते हैं। आपको ये भी विदित होगा, रावण और बाणासुर जैसे महाबलियों को भी इसे छूने तक का साहस नहीं हुआ। समझ लीजिए कि आप लोगों का भुजबल तो मानो चंद्रमा है, और ये कठोर धनुष उसे ग्रसने वाला राहु है। हमारे स्वामी मिथिलेश जनक की घोषणा है, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोइतोरा, तिर भवन जय समेत वैदे ही, बिन ही विचार बरई हटते।
1: अरे देखो देखो कैसे तमतमाकर ये राजा लोग धनुष की ओर जा रहे हैं।
2: पर एक आज तो अपने आसन से उठा ही नहीं।
1: वे समझदार हैं, और वो देखो वो जो तमक का जोर अजमाने चला था ना, तनिक भी खिसका नहीं सका धनुष को।
0: सभी तो जोर लगा रहे
1: हैं। बेकार
0: जान पड़ता है, और भी भारी हो गया है ये धनुष। मनु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक करुआ।
1: ये सब राजा एक साथ जुट गए हैं, वो देखो। पर सब
0: दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे,
1: सब निर्भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी।
0: सभी राजा श्रीहत होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब क्या होगा?
1: होगा क्या, लौटेंगे अपना सब।
0: जनक जी कुछ कह रहे
1: हैं। शांत शांत
3: शांत। अतिथियों, मैं ये क्या देख रहा हूं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जोपन उठाना। मेरी मनोहर कन्या, बड़ी भारी और अतिकमनीय कीर्ति, इन्हें पाने के लिए इस धनुष का दमन करने वाला वीर क्या विधाता ने रचा ही नहीं? इस धनुष को तोड़ना तो अलग रहा, कोई इसे दिल भर भूमि भी न छोड़ा सका। अब जनिको माखे भटमानी, वीर बीन मही मैं जानी, जो जनते बिन भट भूमि भाई, तो पनु करी होते ना आसाई।
1: अब क्या होगा?
0: देखो छोटा भाई कुछ कह रहा है।
1: उसका मुख तो देखो, माखे लखन कुटिल भाई भौं हैं, रद पट भरकत नयन रिसों हैं।
4: हे दात, रघुवन सिंह महु जहाँ को होई, ते ही समाज अस कही न कोई। राजा जनक ने आपके यहाँ होते हुए भी बड़ी अद्भुत वाणी कही, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमान, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो, काचे खट जिमी टारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाप रोपे नाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करूं बिलोकी अवसो, कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, यदि आपके प्रताप के बल से इसे कुकुर मुत्ते की तरह ना तोड़ फेंकूं, तो आपके चरणों की शपथ है मुझे, मैं फिर कभी धनुष तरकश को हाथ में भी ना लूंगा।
0: सुना पर वो देखो बड़ा भाई क्या कह रहा है, वो भी कुछ कहेगा क्या?
1: ना सय नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा दे।
0: विश्वामित्र मुनि उठ रहे हैं,
1: जा रहे हैं क्या?
0: बड़ी राजकुमार से कुछ कह रही है।
5: दशरथ पुत्र पुरुष सिंह, तुम्हें इस संकट का निवारण कर सकते हो वत्स, उठहु राम भंजहु भवचापा, नेटहु तात जनक परितापा।
6: सखी देखो तो खड़े हो गए राम, पर देखो देखो मुखड़े से लगता है हर्ष विषादु न कछु उर आवा। मुझे तो इनका सहज स्वभाव से उठना अच्छा लगता है, थवनी जुबा मृगराज ल जाए। सखी देखो तो उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरखे लोचन फ्रिंग। देवताओं पितरों से मेरी तो प्रार्थना है सखी, यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव है तो शिव

0: तेरे नाल की नाई तो रहूं रामू गणेश गोसाई।
1: सखी सखी महारानी कह रही हैं सब लोग कौतुक निहार रहे हैं, कोई जाकर इन दोनों के गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं। राजा जनक भी अपनापन खो बैठे हैं। कहती हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप कर तापा, सौधन राज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदर ले ही।
0: ऐसे तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए, देखो ना, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे उस सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा।
1: छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर लेता है, जरा सा अंकुश महामत गजराज को दबा लेता है।
2: हो प्रसन्न महेश भवानी, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे फलवती कीजिए, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कि न्यो तो सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गुरता अति थोरी। पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठाना है, वो लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री भी डरे हुए हैं, वो भी तो पिताजी से कुछ नहीं कहते। विद्वानों की सभा में ये बहुत ही अनुचित बात हो रही है। कह धनु कुले सहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। हे विदाता, मैं किस तरह धीरज धरूं? भला कहीं सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है? लगता है सारी सभा की बुद्धि ही पावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी।
1: सखी सखी तुम जरा सीता को संभालो, न जाने क्या बीत रही है इसके जी पर। राजकुमारी परिताप मत करो।
3: राजकुमारी चिंता के मारे तुम्हारी आंखें इधर उधर डोल रही हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन्म विधु मंडल डोल।
0: बोलते क्यों नहीं राजकुमारी? गिरा अलनी मुख पंकज रोकी,
3: लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना।
2: यदि तन मन वचन मोर बनु साचा, और रघुपति पद सरोज जितु राजा है, तो भगवान सकल उर्वासी, करे ही मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संते हो।
1: आंखें खोलो राजकुमारी, वो तुम्हारी ओर देख रही हैं।
4: सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, लगता है उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यही समय है, अब मुझे और विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने।
5: गुरुवर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम।
1: देखो उधर देखो सखी, लखन लिखेउ रघु बंस मनी, ताकेउ हर को दंड, पुल के गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंड।
6: हे दिशाओं के हाथियों, हे धरती को धारण करने वाले कच्छप शेषनाग बारा, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा।
7: ये क्या हुआ? कैसी दामिनी धमकी? आकाश में ये गोल गोल सा आकार कहां से आया?
8: वही तो धनुष है।
7: उठा भी लिया?
8: उठाने की बात करते हो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब उठा रहे।

0: सखियो राजकुमारी को राम के पास ले चलो, जयमाला पकड़ाओ, आगे बढ़ो बेटी।
1: राजकुमारी सामने रघुवीर राम खड़े हैं, अब संकोच न करो। पहिरा बहु जयमाल सुहाई, बेचारी प्रेम विवश पहराई न जाई। जब उन्हें इतना भी स्पर्श नहीं कर पाती कि पैर किसे छूगी राजकुमारी, समझी नहीं सकी गौतम तियगति सुरति करी नहीं पर सती पग पानी। राजकुमारी के इस भय की बात सुनकर रघुवंशमणि मुस्कुरा उठे। राजकुमारी वो मुस्कुरा रहे हैं, यही अवसर है। राजकुमार के चांद मुख से हमारी राजकुमारी के करकमल भयभीत हैं। गाओ गाओ सखी, जयमाला पड़ रही है।

0: बात है।
1: महीनों का बात।
2: क्यों भाई क्यों?
1: छीन लो सीता को, दोरे धनुष दौड़ नहीं सरे।
2: दोनों राजकुमारों को बांध कर ले चलो, जीवत हमारी तुम्हारी को बरई।
1: और महाराज जनक उनकी सहायता करें
2: तो भी जीतऊ समर सहित दो भाई।
0: कैसी निर्लज्ज बातें कर रहे हैं आप लोग। उस समय आपकी शूरता कहाँ गई थी जब धनुष तोड़ना था।
3: शान शान।
4: अरे आप लोग बैठे।
3: अरे इधर देखो, इधर उधर देखो, प्रवेश द्वार की तरफ
4: है? ये कौन आ रहा है? बिशप कंद पुरबाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगशाला,
5: कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे।
4: रघुपति परशुराम।
5: परशुराम
2: का नाम लेकर मुनिवर को दंडवत प्रणाम करें।
6: दंडवत प्रणाम।
7: प्रणाम
6: प्रणाम।
8: दंडवत प्रणाम।
9: दंडवत प्रणाम।
10: दंडवत प्रणाम।
11: विदेह राज, आपकी इस रंगस्थली में कहो काह अति भीर।
12: मुनिवर, बात ऐसी है कि मेरी बेटी सीता, जिसे अभी आपने अपना शुभाशीर्वाद दिया है, उसका स्वयंवर था, इसलिए सभी राजागण मेरे अतिथि होकर आए हैं, और इसीलिए सभा में ये सजावट शोभा भी आप देख रहे हैं।
11: ये तो हुआ, पर ये धनुष क्यों टूटा पड़ा है?
12: जी, मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का स्वामी होगा। तो
11: मेरे आराध्य देव का धनुष कहूं जड़ जनक धनुष कै तोड़ा, बेगी दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जहां लही तब राजू।
13: नाथ, संबुधनु भंज निहारा।

0: कोई ही क्यों एक दास तुम्हारा।
1: मेरा दास? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सौ बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा।
2: मोरे वर बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु नासी फिर सकीनी गोसाई। एहि धनु पर ममता के है तू।
1: रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार।
2: सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति हु ना दोसु। मुनि बिन काज करिए कतरो।
1: रे शठ तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या? बालक बोली बदहू नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूपि बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। रे महीप कुमार देखिए फरसा, सहस बाहु भुज छेदन हारा। कहे देता हूं मात पितही जनी सोच बस, करसी महीप किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति भोर।
2: मुनिवर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव को ठारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। सुनिए महाराज, यहाँ कुमार बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरे जाए। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको भृगुवंशी समझकर आपके जनऊ को देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोककर कहता रहा। हमारे कुल की रीति सुर महिसुर हरिजन और गाय, इन पर हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते। इन्हें मारने से पाप और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति मिलती है। इसीलिए आप मारेंगे भी तो भी आप ही के पैर पड़ेंगे। के तो मुनिवर कोटि कुल सम बचुन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर।
1: कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधा संकु। काल कबुल हुई है छन माही, कहूं पुकार खोरी मोहिनाई। तुम हटकौ जो चहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा।
2: हे मुनि आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कौन कर सकता है? अपने मुंह तुम आपन ही करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं सतो तब पुनि कुछ कहू, जनेरे से रो के दुसह दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। सूर समर करनी कर कहीं ना जना वही आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कतही प्रताप। लेकिन आप मुनिवर आप तो तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा।
1: सुनिए विश्वामित्र अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिनो की बहुत मैं बाचा, अभी यू मरन हार भा साचा।
3: क्षमा करे बंधुवर इससे अपराध हुआ, बाल दोष गुण गनहिन साधु।
1: घर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देता जा रहा है फिर भी बिना मारे इसे छोड़ देता हूँ। सो क्यों केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत यही काट कुठार कठोरे। गुरही उरिन हो त्यू श्रम थोरे।
2: हे भगुपति परशुराम।
4: अब नारू बालक
2: भगवान परसु दिखा बहु मोहि, मित्र बेचारी बचाओ नृप द्रोही। मिले न कबहु तुभट रन गाय, विज देवता घर ही के बाड़े।
4: अनुचित है
5: अनुचित है
4: अनुचित
5: है अनुचित है।
6: नाथ करहु बालक परछोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, कौ की बराबरी करत आयाना। जौ लड़िका कछु अजगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरी। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समसील धीर मुनि क्यानी।
1: लेकिन फिर हंसा तेरा ये भाई। राम तोर भ्राता बड़ा पापी गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पै मुख नाही सहज टेढ़ अनुहरई न तोही नीच मीच सम देख न मोही।
7: सुनिए मुनिवर, क्रोध पाप कर मूल जे ही बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया परिहरि कोप करिए अब दाया टूट चाप नहीं जुरही रिसाने बैठ हो ही पाए पिराने जो अति प्रिय तो करिए उपाय जोरिए को बर गुनी बोलाए।
1: राम मैं तेरे ऊपर ये कम कृपा नहीं कर रहा हूं बचहू बिचारी बंधु लघु तोरा इसका तो मनु मलीन तनु सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घटु जैसे।
6: सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचनु करिए नहीं काना बररे बालकु एक सुभाव इन्हीं न संत विदुष ही काऊ तेही नाही कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा कृपा कोप बतु बंधव गुसाई मौ पर करिए दास की नाई कही ये बेग जही बिधिर सिचाई मुनि नायक सोई करो उपाय।
1: राम मेरा रोज कैसी जा सकता है जब अजहू अनुज तब चितब अनय से मेरा रोज क्या प्रथा हो जाए नहीं एही के कंठ कुठार न दीना तो मैं काह कोप कर कीना ये भी कोई बात है गर्व स्रवही अब निप रवनी सुनी कुठार गति घोर परसु अछति देखाऊं जियत बैरी भूप किशोर।
6: हे मुनिवर क्रोध त्याग दें आपके कुठारू के आगे मेरा सिर है जहिर से जाई करिय सोई स्वामी मोही जानिय आपन अनुगामी मुनिवर प्रभु ही सेवक ही समरुकस तजहु विप्रवर रोसु बेश बिलो की कछु नहीं दोसु। बात ऐसी है मुनिवर लक्ष्मण तो लड़का ही है देख कुठार बान धनुधारी भय लड़के ही रिस बीरु बिचारी नामु जान पे तुम्हें न चीन्हा बंस सुभाए उतरोते ही दीन्हा यदि आप अन्य मुनियों की भांति होते तो हे गोसाई यही शिशु आपकी पदरज अपने सिर पर रखता। क्षमहु चूक अनचानत केरी चहिए विप्र उर कृपा घनेरी हे नाथ हम आपके बराबर होने की कैसे धृष्टता कर सकते हैं कहां तो धरती पर चलने वाले चरण और कहां उन्नत मस्तक और फिर राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुहारा। देखिए हमारा तो एक ही गुण है धनुष और आपके नौ गुण हैं श्रम दम तप इत्यादि सभी परम पुनीत विप्रवर सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे।
1: तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा जान पड़ता है मुझे निपट ब्रह्मचारी न जान। सुन तुझे बताता हूं कि कैसा विप्र हूं मैं चाप स्रवा सर आहुति जानू कोप मोर अति घोर किसानू समिधि सेन चतुरंग सुहाई महामहीप भय पशु आई मैं एही परसु काट बल दीने समर जग जप कोटे ने कीने। तू ब्राह्मण मात्र के धोखे में मेरा निरादर कर रहा है तुझे मेरा प्रभाव नहीं मालूम ये धनुष क्यों तोड़ डाला तेरा घमंड बढ़ गया और तुझे ऐसा अहंकार हो गया है मनहू जीत जब उठा रहा।
6: तनिक सोच विचार कर बोलिए मुनिवर रिस अति टूट पिनाक पुराना मैं कहीं है तू करो अभिमाना यदि हम सचमुच किसी को विप्र कहकर उसका निरादर करेंगे तो ये सत्य भी सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे डरकर हम अपना मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना समबल अधिक हो बलबाना जौरन हम ही पचारे को लरही सुखेन कालु किन हो क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना कुल कलंक तही पावर आना। कहो सुभाव न कुल ही प्रसंसी, कालहु डरहिन रन रघुबंसी।
8: क्या कहूं मैं, लगता है मेरी बुद्धि पटल उखर गई है, पर फिर भी राम रमापति करधन लेहू, खेचहू मिटे मोर संदेहू।
9: अरे अरे, ये कैसा चमत्कार, धनुष आप ही आप मुनि के हाथों से उड़कर राम के पास पहुंच गया।
10: अद्भुत आश्चर्य, राजकुमार है कि ये देवता।
11: देखो देखो, भृगुपति परशुराम हाथ जोड़ रहे हैं।
12: अरे ये तो राजकुमार राम के आगे विनती कर रहे हैं। सुनो सुनो।

0: जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुकुल केतु की जय, जय जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुपति, जय रघुपति।
1: हे श्रोताओं, भगवान श्री राम ने कौतुक भरी लीला करके सीता स्वरूप आदि शक्ति से मिलन का अभिनय किया। उसके बाद हम आप जिसे विवाह कहते हैं वो तो रीति निभाई, क्योंकि जैसा उसी समय विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। फिर भी राजा जनक ने अवधपुरी को दूत भेजे। दूतों ने अयोध्या जाकर महाराजा दशरथ से आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। फलतः सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। फिर तो अवधपुरी के सारे समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे ठाट बाट और सज धज के साथ अयोध्या से बारात जनकपुरी आई। श्रोताओं, विवाह संपूर्ण होने पर राजा दशरथ चारों वर वधुओं को लेकर बारात के साथ अवधपुरी लौटे। अयोध्या में भांति भांति से आनंदोत्सव मनाया जाने लगा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मुरली बालकृष्ण की सबसे प्यारी सखी, जिसे मुरलीधर एक पल भी अपने से अलग नहीं कर पाते। गोपियां और स्वयं राधा भी मुरली से जलन महसूस करती। गोविंद के लिए बावरी हुई हर गोपी का स्वप्न था कि कान्हा उसे बांसुरी

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।